0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी मुहक्किकीन क्वांटम कंप्यूटिंग के शोबे या ऐसे निजाम में पेशरफ कर रहे हैं जो पेचीदा मुश्किलात को हल करने में आम कंप्यूटर्स के मुकाबले में ज्यादा तेज हैं। मुल्क का पहला मॉडल जिसको न्यूट्रल एटम कहा जाता है अब वस्ती जापान के आईची प्रीफेक्चर में काम कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटर्स मुश्किलात को हल करने के मुतअद्दिद इम्कान तलाश करने के लिए एटम और इलेक्ट्रॉन जैसे जर्रात के मुनफरिद रवैये इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रल एटम क्वांटम कंप्यूटर एक किस्म है जो मुमकिन तजारती इस्तेमाल के लिए जेर गौर है। ये जापान मॉडल इंस्टीट्यूट फॉर मॉलिक्यूलर साइंस समेत एक ग्रुप ने तैयार किया है। मुहक्किकीन का कहना है कि ये ऐसे एटमों को मुंसलिक करने के लिए वैक्यूम चैम्बर के अंदर लेजर का इस्तेमाल करता है जो बरकी तौर पर चार्ज नहीं होते हैं। इत्तलात के मुताबिक ये मॉडल क्वांटम कंप्यूटर्स की दीगर अकसाम के बरक्स कमरे के दर्जा हरारत पर काम कर सकता है। इसका मतलब है कि इसे कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है और इसे ज्यादा अमली इस्तेमाल के लिए छोटे साइज में रखा जा सकता है। इसे तैयार करने वालों का कहना है कि उनका सिस्टम फिलहाल बुनियादी हिसाब किताब कर सकता है। अगले इकदाम में बड़े पैमाने पर हिसाब शुमार को फाल करने के लिए इस्तेकाम को यकीनी बनाना शामिल है। वियतनाम जंग की तस्वीर खींचने के लिए मशहूर जापानी फोटो जर्नलिस्ट इशिकावा बुनियो इतवार के रोज नागानो प्रीफेक्चर के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 88 वर्ष थी। इशिकावा ने 1965 और 1968 के दरमियान जनूबी वियतनाम के साइगॉन में एक फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम किया था जो अब होची मिन शहर है। वो बाद में शिमाली वियतनाम चले गए थे। उन्होंने वियतनाम जंग के हकायक तस्वीरी शक्ल में रिकॉर्ड करते हुए 15,000 से ज्यादा तस्वीर खींची। यहाँ तक कि वो एक फोटोग्राफर के तौर पर अमरीकी फौजियों के साथ जुड़ गए। इशिकावा को जापान के मारूफ जंगी फोटोग्राफर्स में से एक के तौर पर जाना जाता है। वो 1969 से ओकिनावा में भी सरगर्म थे। इशिकावा ने फादेना हवाई अड्डे से वियतनाम के लिए रवाना होते B-52 बम्बार तैयारों और उन फौजियों की तस्वीर खींची जिन्हें वियतनाम भेजा जा रहा था। चीन में होने वाले एक मुकाबले में एक इंसान नुमा रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी आलमी इंसान नुमा रोबोट गेम्स हफ्ते के रोज बीजिंग में शुरू हुई। चीनी दार हुकूमत की बल्दियाती हुकूमत और दीगर इदारे इस 5 रोजा मुकाबले की मेजबानी कर रहे हैं। इसमें जापान जैसे 16 ममालिक की कंपनियों समेत 666 टीमों के 2,000 से ज्यादा इंसान नुमा रोबोट हिस्सा ले रहे हैं। हिस्सा लेने वाले रोबोट्स की तादाद में पिछले साल से 4 गुना इजाफा हुआ। वो 51 इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं जिनमें ट्रैक एंड फील्ड, फुटबॉल और खाने पीने की चीजें पेश करने जैसे अमली काम शामिल हैं। 100 मीटर दौड़ के इब्तदाई राउंड में एक रोबोट ने 9.32 सेकेंड में दौड़ मुकम्मल की। उसने पिछले साल के 21.50 सेकेंड के जीतने के वक्त को पीछे छोड़ दिया और यहां तक कि यूसेन बोल्ट के कायम करदा 9.58 सेकेंड का इंसानी आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। चीनी हुकूमत रोबोट की सनत को तरक्की के एक नए शोबे के तौर पर देखती है। चुनाचा बहुत सी कंपनियां उनकी तैयारी की दौड़ में शामिल हो गई हैं जिसकी वजह से इस शोबे में तकनीकी जिद्दत आई है।
1: इसके साथ ही खबरें खत्म हुईं।

0: तो आइए सबक नंबर 26 का मकालमा सुनते हैं।
1: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
2: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
3: カイトは本当に料理が上手だね。
1: 僕、シェフになりたいんだ。
3: いいね。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
4: काइटो खाने का एक डब्बा चादर पर रखकर कहता है,
1: ओ बेंटो दा यो।
0: ये है खाने का डब्बा।
1: बुकु गा त्सुकुत्तान दा। दोज़ो।
0: मैंने बनाया है, ये लें।
4: मिया खाने की रंग बिरंगी खूबसूरत अशिया देखकर हैरानी से कहती है,
2: कीरे।
0: बहुत खूबसूरत है।
4: तामी खाना देखकर मुतासिर है, वो कहती है,
2: सुगोई।
0: शानदार।
2: इतादाकिमास।
0: खाना शुरू करते हैं।
4: ताम खाना शुरू करती है और पहले जापानी ऑमलेट खाती है।
2: कोनो तमागोयाकी अमाकुते ओइशी देस।
0: ये जापानी ऑमलेट मीठा और मजेदार है।
4: मिया कहती है,
3: काइटो वा होंतो नी ल्योरी गा जोजू दा ने।
0: काइटो, आप वाकई खाना पकाने के माहिर हैं।
4: काइटो जवाब देता है,
1: बुकु शेफ नी नारिताई दा।
0: मैं बावर्ची बनना चाहता हूँ।
4: मिया सर हिलाकर कहती है,
3: ई ने।
0: ये तो अच्छा है।
4: ताम और मियाँ काइतो की खाना पकाने की महारत से खासी मुतासर मालूम होती हैं।
0: मुझे यकीन है कि काइतो पेशावर बावर्ची बनने में कामयाब हो जाएगा। तो आइए आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
1: ओ बेंटो दा यो। बुकु गा त्सुकुत्तान दा। दोज़ो।
2: कीरे। सुगोई। इतादाकिमास। कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
3: काइतो वा होंतो नी ल्योरी गा जोजू दा ने।
1: 僕、シェフになりたいんだ。
3: いいね。
4: आज के सबक का कलीदी जुमला है, ये जापानी ऑमलेट मीठा और मजेदार है।
2: この卵焼き甘くて美味しいです。
4: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए एक से ज्यादा तासीरात का इजहार कर सकते हैं।
0: कोनो तमागोयाकी की मायनी है ये जापानी ऑमलेट। तमागोयाकी या जापानी तर्ज का आमलेट खाने के डिब्बे, जिसे हम टिफिन भी कह सकते हैं, में तकरीबन लाजमी शामिल होता है। इसे बनाने के लिए अंडों में शक्कर शामिल करके फेंटा जाता है, फिर फ्राई पैन में उसकी पतली तह लगाते हुए रोल किया जाता है। हतमी तौर पर यह ब्लॉक की शक्ल का होता है। अगला लफ्ज़ अमाकते, दरअसल ई इसमें सिफत अमाई यानी मीठा से बना है और ओइशी के मायनी है मज़ेदार। आज का नुक्ता दो या जायद इसमें सिफत को जोड़कर अपने तासुर का इजहार करने से मुतालिक है। ई इसमें सिफत को जोड़ने के लिए उसके आखिरी ई को हटाकर कुते लगाना होगा। आज के मकालमे में अमाई और ओइशी मिलते हैं तो अमाई तब्दील होकर अमाकते बनता है और उसके बाद ओइशी लगकर अमाकते ओइशी बनता है।
4: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
5: 甘くて美味しいです。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: जी सामईन, उम्मीद है आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: अब एक पार्क से मुतालिक तासुरात का इजहार करने वाला एक मकालमा सुनिए।
6: 上野公園どうでしたか？
7: 広くて綺麗で。とても良かったです。
0: अब इस मकालमे की तशरीह।
6: उएनो कोएन どうでしたか？
4: उएनो पार्क कैसा था?
0: उएनो कोएन यानी उएनो पार्क, ये टोक्यो में वाकई एक बड़े पार्क का नाम है और どうでしたか यानी कैसा था, ये तासुर पूछने का एक अंदाज है।
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
4: वसी और खूबसूरत और बहुत अच्छा था।
0: 広くて ई इसमें सिफत हीरोई यानी वसी की अगले इसमें सिफत से जुड़ने वाली शक्ल है। किरे दे ना इसमें सिफत किरे ना यानी खूबसूरत की अगले इसमें सिफत से जुड़ने वाली शक्ल है। ना इसमें सिफत को अगले इसमें सिफत से जोड़ने के लिए आखिरी ना को दे में तब्दील किया जाता है। तोतेमो योकात्ता देस का मतलब है बहुत अच्छा था।
4: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
5: 広くて綺麗で、とても良かったです。